खामोश पुतली सी काया जो बहुत चली और चलती रही और चलते चलते आ बैठी वह झुकी कमर गंगा।

इस जीवन के लंबे पट पर प्रहार समय के सहती रही, दूर शून्य में जुगनून जैसा एक पखेरू उड़ता दिखा, शायद कोई